0: की और जो आप समझती हैं कि अगर कोई इस बिजनेस को इस तरह स्टार्ट करना चाहिए, अपने किसी भी पैशन को वो आगे लेकर चलना चाहिए, तो उन चीजों का खास तौर पर ख्याल रखें।
1: असल में जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है ना, आपके पास आइडिया तो होता है, लेकिन जो सबसे मुश्किल चैलेंज है वो है प्लानिंग, आपकी आपका पेशेंस, आपकी मेहनत, आपकी कंसिस्टेंसी और इन्वेस्टमेंट। कि ये सारी चीज़ें अगर आपने अपने आइडिया को, अपने ख्वाब को पूरा करना है, तो इन सारी चीज़ों को साथ लेकर बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है। क्योंकि आइडिया तो आपके पास है, लेकिन जब तक उस आइडिया को आप अमली शक्ल देने के लिए, एक आपको प्रॉपर हिम्मत और हौसले की ज़रूरत है।
0: राइट, वक्त हुआ जाता है एक छोटे से ब्रेक का, सो विल कम बैक आफ्टर दिस वेरी वेरी शॉर्ट ब्रेक, स्टे ट्यून्ड।
2: Rejuvenating media day by day. This is Salaam Media. When the perfect blend of stylish decor, exquisite halal cuisine, and warm hospitality come together, it could only mean Al Bayt Lodge, your true home away from home. Al Bayt is the ideal heaven for families, business people, and tourists, with its four-star family rooms and other luxurious facilities. Conveniently situated close to Port Elizabeth Airport, the beach and other amenities, your stay will be truly unforgettable, as you'll be taking home lasting memories of the warm hospitality, the serenity and tranquility that Al Bayt has to offer. For reservations, call 041-583-6415. Or visit www.albaytlodge.co.za.
3: Hey, Gulam.
4: Yeah?
3: Did I return your lawnmower last month?
4: No, bhai, you didn't.
3: Oh, no. Now what'll I do? I wanted to borrow it again, man.
5: With Randree Jewelers, you won't have to borrow or lend because the prices are so well trimmed on all gold and diamond jewelry. Alternatively, we could remake your old jewelry into a brilliant new design. Visit Randree Jewelers at 151 Stephen Slamini Road, Musgrave, Durban. Randree Jewelers, the family name you can trust.
6: Gaza needs your support more than ever. Homes have been shattered and families have lost everything. With your support, our teams are delivering clean water tankers, feeding the hungry and assisting orphans who have no one left. Let us give Gaza whatever help we can. African Muslims Agency, empowering, educating, inspiring.
7: Are you banking with convenience, transparency and flexibility? With Al Baraka Bank's transactional banking account, you can enjoy convenient everyday banking designed around your needs. Benefit from zero fees on point of sale transactions and manage your banking easily through Al Baraka's secure mobile banking app and internet banking platform. From everyday payments to managing your personal or business banking, Al Baraka makes banking simple, transparent and convenient. Visit albaraka.co.za to learn more. Al Baraka, your partner bank. Al Baraka Bank Limited is an authorized financial services and credit provider.
2: Rejuvenating media day by day. This is Salaam Media.
0: जी, वेलकम बैक प्रोग्राम मिड मॉर्निंग टॉक विद मरियम हाशमी। हमारे साथ मौजूद हैं सना उस्मान, और सना उस्मान हमें बता रही हैं कि माशाल्लाह उनका जो बिज़नेस है वो माशाल्लाह उन्होंने किस तरह से बिल्डअप किया। अच्छा सना, एक और क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोग हेजिटेट करते हैं, घबराते हैं न्यू चीज़ को करने में और स्पेशली अपने पैशन को, क्योंकि समटाइम ये होता है कि जब आप कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं, जब आप उस पैशन, आपका कोई इंटरेस्ट है, आपका कोई पैशन है, आपकी कोई चीज़ है, आप उससे कोई चीज़ बनाना चाहते हैं, लेकिन कुछ चैलेंजेस ऐसे आ जाते हैं लाइफ में कि जिससे वो बिल्कुल गिव अप कर जाते हैं अपने शौक से भी और अपने काम से भी। तो आपको कुछ ऐसा कभी जिंदगी में फील हुआ कि नहीं, ये मेरा जो पैशन है इसने मुझे जिंदगी में कुछ खास वो दिया नहीं, उससे मुझे वो जो मैं चाहती थी आउटकम वो मिला नहीं, वो आया नहीं, तो आपने कभी ऐसा गिव अप सोच आई है आपकी?
1: देखिए, बिजनेस तो एक ना हर दिन के लिए एक नया लेसन देता है आपको। आपको कभी भी चीजें कभी भी आपकी तवक्को के मुताबिक नहीं होती, मतलब कभी आपके फैसले मुश्किल हो जाते हैं, कभी आपके ऐसे मौके पे खड़े हो जाते हैं कि जहाँ पे आपने डिसीजन लेना है वो सबसे ज्यादा मुश्किल हो जाता है। हर चीज आपके मुताबिक नहीं होती, लेकिन आपने अपने फेलियर को अपना फेलियर नहीं समझना, उसको एक नया सबक समझ के चलना है। मेरी लाइफ में भी इस तरह के बड़ी चीजें आई हैं, अप्स एंड डाउन आती हैं आ रही हैं, लेकिन यही वाली बात

0: आपके अंदर का हौसला, हिम्मत उसको बूस्ट अप करता है और कि नहीं, हमने इस चैलेंज को फेस करना है और हमने अपने पाँव पे खड़े होके अपने बिजनेस को, अपने काम को और अपने ख्वाब को पूरा करना है। तो ये चीज़ें तो साथ साथ चलती रहती है, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ।
1: सही। तो अच्छा सना, आपने चैलेंज की बात की है, अच्छा मैं चाहूँगी आप अपने थोड़े से आर्ट पीसीज के बारे में भी लोगों को बताएं ज़रा। आप थोड़ा सा ज़रा अपने कैफ़े की तरफ ज़रा रुख कीजिए, मैं थोड़े से आपके आर्ट पीसीज के बारे में बात करना चाहूँगी कि आप में क्या जो है आप बनाती हैं, किस तरह से आपकी थाट्स हैं, आप अपने टेबल्स जो भी आपकी जो है चीज़ें, आप ज़रूर हमें दिखाइए, हमारे व्यूअर्स को, हमारे लोगों को, ताकि जो है वो देख सकें और अंदाज़ा कर सकें कि अगर आप इस तरह की किसी फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपके लिए कितनी आसानियाँ हैं अगर आप कर सकें।
0: सबसे पहले तो आप ये एक वॉल हैंगिंग देख रहे हैं जो बिल्कुल मेरे पीछे लगी हुई है,
1: राइट?
0: द वॉल हैंगिंग, ठीक है, इसमें थोड़ा सूफी टच दिया हुआ है, थोड़ी कैलीग्राफी दी हुई है, थोड़ा सा इसमें जरा रूहानियत वाला टच दिया हुआ है। फिर साथ ही हम इसके बाद यहाँ पे आते हैं, ये टेबल राइजर है, देखिए इसको हम एज अ टेबल के लिए भी यूज कर सकते हैं, ये सब हैंड पेंटेड है, इसके ऊपर साथ लगा हुआ है। तो इसी तरह ये मेरे पीछे जितना भी आप देखना चाहें देखेंगे, यहाँ पे बहुत सी हाउस होल्ड चीजें लगी हुई हैं, जैसे जस्ट लाइक दिस इज अ टिश्यू बॉक्सेस, ठीक है, ये टिश्यू बॉक्सेस हैं, ये वुडन ट्रेज हैं, वॉल हैंगिंग है। इसमें ये है कि मैं आपको ये आइडिया देती हूँ कि खवातीन को शौक होता है घरों को सजाने का, ठीक है, वो अपने घर को सजाना ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन उनको ये भी होता है कि उनको अपनी पुरानी और अपनी जहेज की चीजों से, अपनी अम्मियों की चीजों से बड़ी मोहब्बत होती है। टाइम बाय टाइम सम टाइम के बाद चीजें अपनी रौनक, अपनी चमक खो बैठती हैं। तो जो मेरा विजन है वो ये है कि अगर आपने अपने खवातीन जो है या कोई भी, आप अपने आर्ट को वेस्ट मत करें, अपने सामान को वेस्ट मत करें, हम पुराने से पुराने फर्नीचर को भी आपको नया करके दिखा सकते हैं कि जी आपने अपनी चीज जाया नहीं करनी, आप उसको रिन्यू कर सकते हैं, आप उसको न्यू पेंट कर सकते हैं, आप उसको नया रंग, नई जिंदगी उसके अंदर फूंक सकते हैं।
1: ये बेहतरीन है, ये आपने बड़ी खूबसूरत बात किया, क्योंकि जब हम अपनी पुरानी चीज़ों की बात करते हैं, अपने अम्मी की कोई प्यारी चीज़ है जो हमारे दिल से बड़ी करीब है और हम उससे जो है कनेक्ट होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हमारा दिल जो है खुश हो जाता है, हम उसको कहीं और वेस्ट नहीं करना चाहते या उसको कहीं और रखना नहीं चाहते, तो उसका बड़ा अच्छा इस्तेमाल है जो आपने बताया। अच्छा सना, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके, आपके माइंड में क्या है? हमारे पास बड़ा शॉर्ट टाइम रह गया है, आपके साथ बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही है, आप ज़रा बताइएगा फ्यूचर प्लान्स आपके कैफ़े के बारे में आपके क्या हैं।
0: कैफे के बारे में यही है कि ये एक जस्ट एक कैफे ना रहे, ये एक रिकग्नाइज्ड, मैं इसको क्रिएटिव प्लेटफॉर्म बनाना चाहती हूँ जहाँ पे फूड कल्चर बिजनेस और कम्युनिटी एक साथ आए। मुस्तकबिल में मेरा यही है कि यहाँ पे क्रिएटिव इवेंट्स होते हैं, एग्जीबिशन होती हैं, वर्कशॉप्स होती हैं और खवातीन नौजवान सब एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, अपना टैलेंट दिखाते हैं, अपने आर्ट को शोकेस करें यहाँ पे। और सबसे बड़ा ख्वाब मेरा यही है कि अगर यहाँ आर्ट का लोग नाम सुने तो उनके पास सिर्फ एक कैफे ना आए, उनके पास अपॉर्चुनिटी, क्रिएटिविटी, क्वालिटी, इंस्पिरेशन का तस्वुर उनके जहन में आए। और शायद यही पूरे सफर की सबसे खूबसूरत बात होगी कि हम एक बिजनेस बिल्ड ना करें बल्कि हम एक लेगेसी बनाएं जो दूसरों को भी अपने ख्वाब पूरे करने के लिए इंस्पिरेशन दे।
1: ज़बरदस्त सना, ये बहुत अच्छा मैसेज था और बहुत अच्छी आपके साथ हमारी गुफ्तगू रही है। और बस मैं यही कहना चाहूँगी कि जो हमारी न्यू जनरेशन है, जो हमारे लोग हैं जो अपना नया कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, सबसे पहले तो आप अपने काम में स्किल्ड हों, आपको जो है इस तरह के, अगर आप आर्ट वर्क में इंटरेस्टेड हैं, और जैसे सना ने बात की इनके कैफ़े में कि बहुत सारी वर्कशॉप्स भी होती हैं, उन वर्कशॉप्स पर आप उनको ज़रूर ज्वाइन कीजिए, कुछ नया सीखिए, ताकि जो है रंगों से न सिर्फ आप खुश हों बल्कि रंगों से आपको खेलना भी आना चाहिए, आप कुछ ना कुछ उससे ज़रूर क्रिएटिव बना सकते हैं, क्योंकि अल्लाह सुभान व तआला की बहुत सारी नेमतें हैं जो रंगों से भरी हुई हैं। आप अपने इर्द गिर्द देखते हैं माशाल्लाह, बहुत सारी ग्रीनरी है, ग्रीन कलर है, रेड कलर है, येलो कलर है, मतलब आप जितना रेनबो के कलर से भी आप निकालें चीज़ें, तो बहुत सारी ऐसी ज़िंदगी है जो रंगों से भर जाती है, और ज़िंदगी में रंगीनियाँ भी लोगों के अच्छे अखलाक से और अच्छी चीज़ों से, सदका जारिया से आती है। तो आप अपने इस काम को सना जारी रखिएगा और हमारी बहुत सारी दुआएँ आपके साथ हैं और उम्मीद है कि आप مستقبل میں ضرور کامیاب ہوں گی, اور اسی طرح اپنا علم آپ سیکھیں اور سکھائیں اور لوگوں کے لیے جو ہے وہ راہ ہدایت وہ بنتی چلی جائیں. بہت شکریہ آپ کے اس ساتھ کا, اپنا بہت خیال رکھیے گا, اللہ حافظ. جی تھینک یو ویری مچ. یہ تھی ہمارے ساتھ ثنا عثمان, اور ثنا عثمان جو ہے شی جسٹ مینشنڈ کہ کس طرح انہوں نے اپنے اس بزنس کا آغاز کیا, کس طرح انہوں نے جناب ان چیلنجز کو سائڈ پہ رکھا, اپنے پیشن کو انہوں نے آگے رکھا اور اپنی زندگی کو اور دوسروں کی زندگی کو آسان بنانے کی ایک راہ جو ہے وہ انہوں نے ہموار کی. ہمارے ساتھ رہے گا, ٹائم فار اے ویری ویری شارٹ بریک. شارٹ بریک کے بعد آتے ہیں اور آپ سے ملاقات کرتے ہیں اپنے نیو گیسٹ کے ساتھ. Tuned with Salaam Media.
2: Connect and stay ahead with Salaam Media. This is Salaam Media coming to you live from South Africa.
3: Shimmer, sparkle, captivate. Nothing less than a masterpiece. Droplets of gold inspires precious design. Platinum bursts with intricate freshness, and every pure diamond becomes more than just a girl's best friend. Voda Gold Gem Jewelers, where timeless dreams become a reality. Come to us. We tailor-make designer gold, platinum, and diamond jewelry. Trade in or remodel your old gold. Clad yourself with classy name-branded watches. We offer insurance valuation and Freeza card calculation. Visit us at 534 Ridge Road, Overport, or call 031-208-9142. Voda Gold Gem Jewelers, manufacturers of fine gold and diamond jewelry.
4: Kids these days are smart, and when you're competing for their attention against their smartphones, you need to make smart choices, like using Sunfoil Triple Refined Pure Sunflower Oil in every meal you make. It's naturally cholesterol-free and approved by the Heart and Stroke Foundation as part of a balanced eating plan. So whether you're cooking, frying, or baking, you get the great-tasting results that'll get their attention faster than the latest app. And if that doesn't work, change the Wi-Fi password. Sunfoil. Now we're cooking.
5: When you give water, you bring life to drought-affected communities, providing fresh water for drinking, cleaning, and growing. Your support helps Islamic Relief implement water, sanitation, and hygiene projects, providing clean water to communities around the world. Donate now to Islamic Relief.
6: Right now, in lands many of us feel deeply connected to, a mother holds a sick child, worried and fearful, as she knows her nearest hospital has been destroyed. This is the mother we go beyond borders to reach. Doctors Without Borders is there in the world's toughest places. We go where others can't or won't, and we go immediately. When you give to us, we go even further. Visit msf.org.za/sadaqa, that's SADAQAH, and support Doctors Without Borders today. Doctors Without Borders, we go there.

0: Listen to something fresh. Listen to Salam Media.
1: जी वेलकम बैक प्रोग्राम मिड मॉर्निंग टॉक विद मरियम हाशमी में आपको खुश आमदीद कहते हैं. वी वेलकम यू एंड उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लग रहा होगा. अपना भी पार्टिसिपेशन ज़रूर दीजिएगा, हमें बताइएगा कि आपकी जो है आपका फीडबैक क्या है और आप भी क्या सुनना चाहते हैं. जी हमारी दूसरी गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, यूके से उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, लंदन में होती हैं. अच्छा इनके बारे में मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन जो है वो देना चाहूँगी क्योंकि ये इनकी बहुत सारी काविशें हैं, बहुत सारी इनकी जो अचीवमेंट्स हैं जो मैं उसमें से लिटिल बिट थोड़ा सा आपके साथ शेयर करना चाहूँगी. जैसे कि फ्रीलांस जर्नलिस्ट हैं, जर्नलिज्म में इनका बहुत सारा एक्सपीरियंस है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इन्होंने कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है. इनके कम्युनिटी डेवलपमेंट कंसल्टेंट के तौर पर ये काम करती हैं. इसके अलावा पीपल्स पार्टी यूके की ये वाइस प्रेसिडेंट हैं. जी हाँ उनकी खिदमत जो है वो अंजाम दे रही हैं, पॉलिटिक्स में है, पॉलिटिकल चीज़ों को बहुत गहराई से देखती हैं और अपनी कौम के लिए बहुत बेहतरीन जो है वो करने की कोशिश करती हैं. जाहिर है जब आप एक स्टेज पे होते हैं या आप एक ओहदे पे होते हैं तो आपको क्या होता है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी कौम आपके साथ. तो ये माशाल्लाह बहुत ज़्यादा कनेक्ट करती हैं, अच्छे से अच्छा जो है वो करना चाहती हैं अपनी कौम के लिए. तो मैं आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाना चाहूँगी, मिलते हैं शगुफ्ता नसरीन से. अस्सलाम वालेकुम शगुफ्ता जी.
2: वालेकुम सलाम मरियम, थैंक यू वेरी मच फॉर सच अ वंडरफुल इंट्रोडक्शन एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट आई एम वेरी एक्साइटेड टू बी ऑन योर प्रोग्राम एंड यू आर अ वंडरफुल होस्ट एनीवे सो वी ऑल नो यू.
1: सो जी बट आप ही एक वंडरफुल पर्सनैलिटी हैं और डेफिनेटली कि आपको आज हमारे जोहान्सबर्ग में ज्वाइन करके आपको शगुफ्ता जी कैसा लग रहा है?
2: Absolutely wonderful, absolutely wonderful. I mean, local तो हम आपको पता है locally या पाकिस्तानी media में UK media में अक्सर जाना होता है, लेकिन Johannesburg it's
1: जी एग्जैक्टली. तो ये मैं चाहती थी बिल्कुल कि आपकी आवाज़ आपका मैसेज जो है वो सिर्फ यूके तक ही महदूद ना रहे. आप माशाल्लाह आपको दुनिया जो है आपके पर्सपेक्टिव को समझे और आपके मैसेज को समझे. अच्छा शगुफ्ता जी स्टार्ट करते हैं आपसे. माशाल्लाह आपकी कम्युनिटी लीडरशिप माशाल्लाह आप में बहुत ज़्यादा आप कंसल्टेंट हैं और उसमें आपकी बहुत ज़्यादा स्किल्स भी हैं और बहुत एक्सपीरियंस भी है. मैं पूछना चाहूँगी आप क्या समझती हैं कि जो कम्युनिटी है उसकी असल डेफिनेशन क्या है, असल पहचान क्या है? क्योंकि जब हम इन कंट्रीज में रहते हैं अपनी कम्युनिटी की पहचान बनाना कितना डिफिकल्ट है और फिर उसकी पहचान के साथ उसको मेंटेन करना ये कितना मुश्किल रहा होगा आपके लिए?
2: देखिए मरियम, हम सब जो है वो जाहिर बात है एक माइग्रेंट कम्युनिटी से हमारा तालुक है, पाकिस्तानी डायस्पोरा से
1: जी.
2: तो आप कहते हैं कम्युनिटी की पहचान क्या है? बेसिकली जब हम अपने मुल्क से बाहर जाते हैं या अपनी कौम से बाहर निकलते हैं
1: जी.
2: तो हम उनके सफीर होते हैं और हमें उनको रिप्रेजेंट अपने मुल्क को, अपने फेथ को, अपनी वैल्यूज को रिप्रेजेंट करना होता है
1: जी.
2: तो एक कम्युनिटी की इससे बेहतरीन पहचान नहीं है कि वो अपनी बेस्ट ऑफ द वैल्यूज जो है उसको पोर्ट्रे करे जब दूसरे लोगों के साथ जाए और अपने फेथ अपने कल्चर का पॉजिटिव फेस जो है वो लेके जाना होता है आपको और उसको इम्प्रूव करना होता है. तो आई थिंक ये हमें अपनी पहचान बनाने के लिए किसी भी जगह पे, किसी भी जगह जहाँ कम्युनिटीज माइग्रेट करती हैं, सबसे पहले उन्हें अपनी जो वैल्यूज में उनकी बेस्ट वैल्यूज हैं वो रिप्रेजेंट करनी चाहिए ताकि जो आपका होस्ट कम्युनिटी है वो आपको समझ सके, वो आपके साथ इंटरेक्ट कर सके.
1: बिल्कुल.
2: और अगर आप नहीं इंटरेक्ट करेंगे और नहीं अपनी वैल्यूज की बात करेंगे तो ऑब्वियसली आप एक नई सोसाइटी में अपनी पहचान बनाने में कभी कामयाब नहीं हो सकते.
1: बिल्कुल बेहतरीन.
2: तो, यहाँ हमें जो है ना ये चीजें हमारे लिए बड़ी जरूरी हैं. जब हम कोई भी जाता है, जब माइग्रेशन करता है तो पाकिस्तानी कम्युनिटी जाहिर बात है आई रिप्रेजेंट ब्रिटिश पाकिस्तानी कम्युनिटी, तो ये चीजें मैंने देखी और अब तो अबाउट 30 years का एक्सपीरियंस है जिसकी अभी तक हम स्ट्रगल कर रहे हैं, आप भी जानते हैं
1: जी. लेकिन ये है कि आप ज़ाहिर हर कुछ तो 100% नहीं होता, कहीं ज़ाहिर अप एंड डाउन होता रहता है, लेकिन इन अप एंड डाउन में आपने अपनी इस चैलेंजिंग पर्सनालिटी को, अपने काम को जारी रखा, चैलेंजेस को फेस किया. अच्छा शगुफ्ता जी आजकल की कम्युनिटीज़ में सबसे अहम ज़रूरत आप क्या समझती हैं कि डेवलपमेंट के लिए जो हम ओवरसीज़ ब्रिटिश पाकिस्तानी आप काम करिए उनके लिए क्या चीज़ ज़रूरी है और उसमें कम्युनिटी का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन होना चाहिए?
2: देखिए मरियम जी, सारी चीज तो बेस ही कम्युनिटी पे होती है और लोगों पे बेस होती है.
1: एग्जैक्टली.
2: और हमारा एक देखिए, अगर मैं प्री 60 या 63 से आपको लेके आऊं, उस वक्त हमारे लोग आए थे एक वर्किंग पर्सपेक्टिव के साथ कि हमने जाना है, थोड़ा काम करना है, थोड़े पैसे बनाने हैं और वापस अपने वतन चले जाना है. तो उस वक्त उनका कोई कॉन्सेप्ट नहीं था कि वो यहाँ रहेंगे, यहाँ पे उनको एंगेजमेंट करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे, और उनकी अपनी मुश्किल थी. हमें उन बुजुर्गों को सलाम करना चाहिए, आज की जनरेशन को बताना चाहिए कि हमारे बुजुर्गों ने किस तरह इन मुल्कों में आके मेहनत की, कितने सख्त हालात में. अगर आप अब के हालात देखें, जहाँ इतनी लेजिस्लेशन हुई है, इतने लॉज हैं, और फिर भी इस वक्त भी हम डिस्क्रिमिनेशन और इस्लामोफोबिया और तरह की चीजें, हेट स्पीच सब फेस कर रहे हैं.
1: जी.
2: हमारे बच्चे भी कह रहे हैं जो कि ब्रिटिश बोर्न है, तो आप सोचे प्री 60s क्या होता होगा. लेकिन हमारे बुजुर्गों ने बड़ी ही जांफिशानी के साथ, हार्ड वर्क के साथ उन्होंने मेहनत की, अपना मुकाम बनाया. और जब उनके बच्चे जारी बात आए और वो यहाँ सेटल हो गए, तो अब वापस वापसी का रास्ता जो था वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता गया. तो वो उस वक्त की जरूरत थी, काम करना, अपने काम से काम रखना, अपने आप को सेफ रखना, इस सोसाइटी में अपनी जगह बनाना. लेकिन अब चीजें जो है शिफ्ट हो गई. आप देखें ना, 40-50 ईयर्स के बाद अब क्या है कि अब हमारे बच्चे जो है, वी आर ब्रिटिश पाकिस्तानी, हमारे बच्चे जो है वो ब्रिटिश बोर्न पाकिस्तानी है.
1: right.
2: अब हमारी जरूरतें चेंज हो गई. अब सिर्फ जॉब करना, पैसे बनाना, अपने मुल्क वापस जाना या कुछ इस तरह की चीजों से हम आगे बढ़ गए. अब हमारी जरूरत ये है, हमारे लोगों को बड़ी ही कॉन्शियसली ये चीज सोचनी है कि हमारा टाइम ऑलमोस्ट गुजर चुका और हमने एक रोल प्ले किया, लेकिन इससे फर्दर हमारे बच्चों का फ्यूचर है, जो हमारी इन कमिंग जनरेशंस हैं, उनके लिए हम एज ए बुजुर्ग क्या छोड़ के जा रहे हैं. तो उसमें हमारा इसमें सबसे बड़ा जो रोल आता है वो आता है कम्युनिटी एंगेजमेंट, और उसके साथ यहाँ की जो वैल्यूज हैं उनके साथ इंटरेक्ट करना, अपनी वैल्यूज को शेयर करना, अपने फेथ की वैल्यूज को शेयर करना. लेकिन सबसे बड़ी चीज, चूंकि इन कंट्रीज में बहुत अच्छा डेमोक्रेटिक सिस्टम है, बहुत सारी हर चीज के अप्स एंड डाउन्स होते हैं, लेकिन यहाँ जो मोस्ट सक्सेसफुल सिस्टम है गवर्नेंस का वो है डेमोक्रेसी, वो थ्रू पॉलिटिक्स. तो हमें पॉलिटिक्स में पॉजिटिवली और हिस्सा भी लेना चाहिए, लेकिन उससे पहले उसको अंडरस्टैंड भी कर, एजुकेशन है तो ले. मैं ये नहीं कहती कि सब आज ही इलेक्शन में खड़े हो जो, सब आज ही मीटिंग्स में चले जाओ, मगर मैं कहती हूँ कि आप सिस्टम को समझें और अपने बच्चों के अंदर जो है ना, आप इसके लिए एक पॉजिटिव फीलिंग पैदा करें. जब हमारे, चूंकि हमारा थोड़ा कल्चर भी है बैक होम में, पॉलिटिक्स भी आपको पता है थोड़ी गड़मड़ हुई हुई है, तो हम वही चीज, वही जुमला यहाँ कहते हैं कि पॉलिटिक्स तो गंदी है, पॉलिटिक्स तो करप्ट है, पॉलिटिक्स तो खराब है. पॉलिटिक्स खराब नहीं है, ये सिस्टम खराब नहीं है, लोग आते और जाते रहते हैं. प्लीज
1: exactly.
2: इन दो चीजों में फर्क करें.
1: अच्छा जी, ये आपने बड़ी प्यारी बात किया. यहाँ पर ही मैं एक क्वेश्चन ऐड करना चाहूंगी कि जिस दौर की आप बात करें, आज भी पॉलिटिक्स में जाना विमेन के लिए बहुत चैलेंजिंग है. जिस दौर में आपने ज्वाइन किया, आपको कितनी डिफिकल्टी आई होगी, कितनी मुश्किलात आई होंगी, कुछ उसके बारे में कहना चाहेंगी?
2: जी बिल्कुल. देखें, डिफिकल्टी हालांकि बहुत सेट्स में होती है, आपको पता है क्लास सिस्टम्स होते हैं, मेन को भी आती है, लेकिन विमेन को ज्यादा आती है. उसके में हमेशा सब कहते हैं कि आप औरत की क्यों बात करते हैं. तो मैं एक बात बड़ी वाजह करना चाहती हूँ, जब मैं एजुकेशन कर रही थी, या मैं स्ट्रगल थी, या मैं एक पोलिटिकल पर्सन के तौर पर मेरी स्ट्रगल थी, तो मैंने कभी सेटअप नहीं किया था कि मैं सिर्फ औरतों के लिए बात करूंगी. लेकिन जब मैंने औरतों का ज्यादा इस्तेहसाल होते देखा, मतलब कंपैरेटिवली जब आप बात करते हो तो कंपैरेटिवली करते हो, तो ऐसा नहीं है कि हर औरत को प्रॉब्लम है या हर आदमी को, लेकिन बिटवीन मैन एंड वुमेन विच सेक्शन इज अफेक्टेड मोर. सो वो मैंने देखा कि वुमेन हर लेवल पे जो थी वो स्ट्रगल कर रही थी. हाँ, अगर आप बहुत ही प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड है आपका, तो ऑब्वियसली यू डोंट गेट दैट सॉर्ट ऑफ स्टफ. मुझे अपने लिए भी ये है कि जब मैंने शुरू की, और मैं बहुत ही दुनिया की खुशकिस्मत तरीन यंगस्टर्स थी कि मुझे मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा का साथ मिला. जैसे ही मैंने पॉलिटिक्स में आंखें खोली, तो मैंने उन्हीं की पार्टी ज्वाइन की, उन्हीं की स्टूडेंट मूवमेंट का मैं हिस्सा बनी, और फिर वो प्राइम मिनिस्टर बने, तो उन्हीं के पेपर से, उनके जो फादर का पेपर उन्होंने शुरू किया था मुसावात, डेली मुसावात, उसी से मेरा जर्नलिज्म का आगाज हुआ। मैं पार्लियामेंट और सेनेट कवर करती थी, तो आई वॉज लिटरली विद बीबी एज मैनी आवर्स शी वॉज देयर।
1: क्या बात है। तो शगुफ्ता जी, पॉलिटिक्स में भी आई, अब आपने जर्नलिज्म में भी आई, प्रेशर कितना ज्यादा था? क्योंकि जर्नलिस्ट पे तो बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, और फेयर जर्नलिज्म करना जो है वो भी एक जरूरी चीज है। कैसे मैनेज किया आपने इन सबको?
2: मैनेज ऐसे किया कि देखिए, हम एक हमारा जो एक आपको पता जर्नलिज्म में भी ब्रांचेज है, तो हम हमेशा लेफ्ट के जर्नलिस्ट रहे, तो लेफ्ट का जर्नलिस्ट जो था वो डेमोक्रेटिक सिस्टम को सपोर्ट कर रहा था, सो आई वाज लकी इन दैट सेंस। एक तो पेपर पार्टी से अटैच था उस वक्त, और दूसरा चूंकि मेरे जो उस्ताद हैं मुनू भाई, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह अता फरमाए, और बहुत सारे नुसरत जावेद साहब माशाल्लाह, ये हम छोटे छोटे थे और इन्होंने हमें गाइड किया, वैल्यूज दी और इतने एथिक्स दिए। आप यकीन करें कि आजकल जाहिर बात है चीजों में चेंज आती है, लेकिन बड़ी तकलीफ होती है कि कैसे येलो ब्लैक पता नहीं कौन कौन सा जर्नलिज्म हो रहा है, और जिनका जर्नलिज्म से ताल्लुक भी नहीं है उनको जर्नलिस्ट बना के प्रेजेंट किया जाता है। जो कि लेकिन आप एक डॉक्टर, एक इंसान जब तक वो प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं करता आप उसको डॉक्टर नहीं कहते।
1: Exactly.
2: इस कंट्री में आप 10 कोर्सेज और डिग्री नहीं करते तो आप टीचर नहीं बनते।
1: लेकिन शगुफ्ता जी, पैशन भी तो देखे ना, हर बंदा जो सीखना चाहता है आप उसका लर्निंग प्रोसेस भी, तो वो अगर सीख रहे हैं तो यही हमारी कम्युनिटी की खास बात है, हमारे लोगों की, पाकिस्तानियों की, कि वो बहुत ज्यादा सीखते हैं, हर चीज वो बड़े अच्छे तरीके से करना चाहते हैं। अच्छा शगुफ्ता जी, बड़ा खूबसूरत एक क्वेश्चन है, यंग जनरेशन है, हमने पाकिस्तान को की मोहब्बत उनके दिलों में डालनी है, जाहिर है उनकी ब्रॉटअप आपने माशाल्लाह वहाँ पे की है, आप माशाल्लाह पूरा लीड कर रही हैं, तो आपसे मैं पूछना चाहूंगी कोई ऐसी एडवाइस आप प्लीज पेरेंट्स को जरूर दीजिए कि किस तरह वो अपने मुल्क से मोहब्बत, क्योंकि अगर आपने बात करते हैं ब्रिटिश बॉर्न पाकिस्तानी तो डेफिनेटली वो थोड़ा सा जरा पाकिस्तान से जरा, क्योंकि उनको ये होगा कि हमारे पेरेंट्स पाकिस्तान से, हम यहाँ से बिलोंग करते हैं, पाकिस्तान की मोहब्बत कैसे डालें उनके दिल में?
2: देखिए मरियम, मैं चूंकि हर बात की मेरे पास एक शुरुआत होती है, तो मैं शुरुआत से बताती हूँ कि कोई भी दरख्त अपनी जड़ों के बगैर ऊपर नहीं जाता।
1: क्या बात,
2: तो वही रह जाएगा या जल जाएगा।
1: सही।
2: आपके बच्चों की जो फाउंडेशन है ना, फखरिया तौर पे आप कहेंगे कि यो मदरलैंड इज पाकिस्तान, आप उनके दिल में उनकी मोहब्बत इंस्टॉल करें। पॉलिटिक्स पार्टीबाजी को छोड़ दें, पार्टियां आती और जाती रहती हैं, ये मैं आप पहले भी अर्ज करती हूँ, मैं यूके में भी लोगों से कहती हूँ कि पार्टी सिस्टम को तबाह ना करो, लीडर्स आते और जाते रहते हैं। इसी तरह मैं पाकिस्तानी जो हमारा डायस्पोरा, उनसे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि ठीक है, मेरी भी जाहिर बात है जब वोट होता है तो आपकी एफिलिएशन भी होती
1: Exactly.
2: है, हर इंसान का वोट है, चाहे मैं जर्नलिस्ट हूँ, स्टिल वोट तो है ना मेरा, मैंने जिसको वोट देना, ऑब्वियसली आई हैव पर्सनल एफिलिएशन या मुझे अच्छा लगती है वो पार्टी, लेकिन पार्टी से कत नजर, क्योंकि आपके बच्चों ने वहां जाके वोट नहीं डाला, उनके अंदर आप मुल्क में पार्टी की वजह से तनफर पैदा ना करें। हाँ। आप उनके दिल में मादर वतन, वो आपकी माँ है, मैंने कहा ना हम जहां भी चले जाएं हम ब्रिटिश पाकिस्तानी, सो आई लव ब्रिटेन, ये यूके ने मुझे एक्सेप्ट किया है तो मैं यूके को दिल से एक्सेप्ट करती
1: हूं। क्या बात है,
2: अपना अपना मुल्क,
1: लेकिन
2: मेरी माँ जो है
1: वो
2: मेरी जड़ें वहां पे
1: है,
2: मेरा जो जड़ है वो पाकिस्तान में, और मेरे बच्चों की, अब आप देखिए मरियम, मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देना चाहती हूँ कि आज से 1000 साल के बाद भी जो आपकी फ्यूचर जनरेशन है वो फॉर्म पे ब्रिटिश पाकिस्तानी लिखेगी एज आइडेंटिटी।
1: जबरदस्त।
2: सो यू विल नेवर सेपरेट पाकिस्तान फ्रॉम योर फैमिलीज और फ्रॉम योर
1: हमारी कोशिश यही होती है कि जहां जहां हम अपने मुल्क को प्रमोट कर सकें, उसकी लैंग्वेज को प्रमोट कर सकें, हम वो अपॉर्चुनिटी जरूर अवेल करते हैं। अच्छा शगुफ्ता जी, आपसे अब आपके पर्सनल इंटरेस्ट की बात करते हैं, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लिखती भी हैं, जरा उस पर रोशनी डालिए कि आप माशाल्लाह कुछ सुनाना चाहें, कुछ कहना चाहें, यूथ को कोई मैसेज देना चाहें, और शौक भी बताइएगा कि कहाँ से हुआ, अम्मी से हुआ, अबू से हुआ, किसी फैमिली मेंबर से आपको शौक हुआ लिखने का, और क्या लिखती हैं?
2: देखिए मेरे पेरेंट्स चूंकि उनकी ये जो दुनिया वाली स्कूलिंग नहीं थी, लेकिन अल्लाह की तरफ से उनको बहुत ज्यादा नॉलेज थी जो कि हमारे बुजुर्गों की एक मिरास रही है, तो बहुत मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि एजुकेशन जो है वो बहुत जरूरी है। लेकिन जैसे जैसे मैं ग्रो अप हुई, जैसे आपको मैंने बताया कि मोहतरम मुनू भाई बहुत बड़ा नाम है जर्नलिज्म का, पोएट्री का, उनसे हुई और मेरा सबसे पहला जो मैंने इंटरव्यू किया था वो प्रवीण शाकिर साहिबा जो कि बड़े सगीर की पाकिस्तान की बहुत बड़ी फीमेल पोइट्रेस रही हैं फिर वो जारी बात है उनकी हादसे में डेथ हो गई।
1: शगुफ्ता जी हम इंशाल्लाह उनसे ही बात की शुरुआत करेंगे। टाइम हुआ चाहता है एक छोटे से ब्रेक का। विल सी यू आफ्टर जस्ट अ वेरी वेरी शॉर्ट ब्रेक। स्टे ट्यून्ड विद सलाम मीडिया फ्रॉम जोहान्सबर्ग।
2: थैंक यू।
3: The following is a paid political advertisement by the Al-Jama'a Political Party.
4: Regularization and the alternative political party for South Africa is the Al-Jama'a effect. Roads will be fixed, refuse will be removed, and personal safety in your homes, streets, parks, and pathways to the local shops and shopping malls will be our top priority. Al-Jama'a aim to regularize shack dwellers by giving them land tenure. Regularize water and electricity supply by making it a reliable source. Vote for good governance, accelerated service delivery, excellence, and the best of breed of councillors, mayors, and mayoral committee members. That is the Al-Jama'a effect. South Africa's alternative political party, the Al-Jama'a effect.
3: That was a paid political advertisement by the Al-Jama'a political party.
5: Discover the Africa of your dreams and surround yourself with her spectacular beauty. Relax beneath her serene sunsets and explore wildlife at its natural best. It's where the pride of Africa comes together. The Kwantu Private Game Reserve. Get to know the Big Five or cruise on an elephant safari game drive. Interact with lion and tiger cubs and enjoy world-class halal cuisine while we pamper you during your five-star stay. Indulge in the true African experience. For reservations, call now on 042-203-1400 or visit kwantu.co.za. The Kwantu Private Game Reserve, the place of gathering.
6: There are over 200 million orphans globally. We can't help all of them, but what if we each helped just one? The El Imdad Foundation now gives you an opportunity to help just one orphan from Syria or Palestine. For just 500 Rand per month, you can help safeguard the dignity of an orphan by assisting them with basic needs such as food, clothing, shelter, medical care, and attention. Our orphan sponsorship program allows you to track the progress of your orphan through regular feedback. Make a difference in the life of an orphan today. Visit alimdad.com or call 0861 786243 for more information.
7: World-class financial services only at Safi Global, your financial partner. If you are looking for Islamic, Sharia and ethical financial products, look no further. Sapphire Global offers a wide range of financial service offerings from short-term to life and investments. A full service center with all financial requirements under one brand. Our highly skilled and experienced consultants are ready to help protect your financial future. Contact us on 041-001-0184 or visit our website on www.sapphireglobalfs.com. Sapphire Global is an authorized financial services provider.
8: Tonight, a child in a shack will try to sleep through the cold. No heating, no insulation, just thin walls and a biting cold. African Muslims Agency is on the ground, reaching families in informal settlements across South Africa with blankets and winter essentials. Help us spread warmth this winter. For 180 Rand, give a blanket. For 360 Rand, a full winter pack. One gift, one less night in the cold. Africa Muslims Agency. Empowering, educating, inspiring.
0: It's a new beginning. It's a new era. Salam Media. Humanitarian journalism.
1: जी वेलकम बैक करते हैं आपको मिड मॉर्निंग टॉक विद मरियम हाशमी लाइव फ्रॉम जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका। जी हाँ टाइम हुआ चाहता है 11:53 और हमारे साथ मौजूद हैं शगुफ्ता नसरीन लंदन से। और जी शगुफ्ता जी आपसे बात हम जारी रखेंगे। बात हो रही थी आपकी शायरी की, आपके कलाम की, तो ज़रा बताइएगा माशाल्लाह आपकी फेवरेट जो थी प्रवीण शाकर, उनको कौन नहीं जानता, उनकी शायरी को कौन है, हर दिल को छू जाती है उनकी शायरी। तो आप उनसे इम्प्रेस हुई और आपने खुद लिखना शुरू किया, तो आप ज़रा कुछ सुनाइए हमारे देखने और सुनने वालों को।
2: थैंक यू मरियम। जाहिर बात है मैं बेसिकली तो एक राइटर हूँ जी जी। तो पोइट्री हमेशा पसंद रही, मैसेज अच्छा लगता रहा, बहुत शॉर्ट उसमें आप एक मैसेज दे सकते हैं। तो अभी थोड़ा सा टाइम होता है तो कभी कभार लिख लेती हूँ, अभी कोई मैं प्रॉपर उससे नहीं लिखती। और एक मैं जस्ट आपका जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसका एक मैसेज मैं रिपीट करना चाहूंगी कि प्लीज मैं अपने सब जिस भी कंट्री में हमारी कम्युनिटी रहती है पाकिस्तानी डायस्पोरा, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज पॉलिटिक्स को पॉजिटिव वे में डिस्कस करें अपने बच्चों के सामने और उनको लेके आए, क्योंकि फ्यूचर में कभी भी खाली चेयर जो है वो आपको हुकूक नहीं दिलाती। अगर आपके बच्चे उन सीट्स पर नहीं बैठे तो फ्यूचर में लेजिस्लेशन में उनका कोई हिस्सा नहीं होगा। और जारी बात है हर कम्युनिटी अपने हिसाब से, अपने फेथ और वैल्यू के हिसाब से अपना नुक्ता नजर रखती है और फिर वो लेजिस्लेशन बनती है। तो प्लीज इस बात को याद रखें कि एम्प्टी चेयर नेवर स्पीक्स फॉर यू, यू हैव टू बी ऑन दैट सीट। इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि इसको बकायदा मेरा एक प्रोजेक्ट है, मैं बात करती हूँ कम्युनिटी में बहुत ज्यादा इस पे, लेट्स टॉक पॉलिटिक्स। तो उसमें जब ये लोग डिस्कस करें उसमें उसके प्लस और नेगेटिव सब सामने आते हैं, लेकिन हमारी इस वक्त की जरूरत है और ये इस्लामिक चीजों के साथ भी कंपेटिबल है। आप देखें इस्लाम जो है वो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, बैत जो है बेसिकली वन वोट लिया जाता था, वोटिंग के जरिए आपकी खिलाफत भी।
1: सही, तो शगुफ्ता जी हमारे साथ हैं और शगुफ्ता जी ने बड़ा खूबसूरत मैसेज दिया कि आप जहां पर भी इस दुनिया में मौजूद हैं आपका जो मैसेज है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, हर चीज़ को आप पॉजिटिव लें ताकि हमारी जो न्यू जनरेशन है वो भी जो है वो पॉजिटिविटी की तरफ जो है वो आ सके। तो ये थी हमारे साथ शगुफ्ता जी, शगुफ्ता जी का थोड़ा सा डिसकनेक्ट हो गई है, इंशाल्लाह वो हमारे साथ दोबारा ज्वाइन किया जी। शगुफ्ता जी बोलिएगा।
2: बस मैं ये चाहूंगी कि ये हमारे वक्त की जरूरत है, इस मैसेज को जितना भी आप आगे कर सकते हैं जरूर करें और मेरी भी कोशिश है कि अपने लोगों के अंदर ये शोर पैदा किया जाए कि वो सिस्टम में हिस्सा लें और उसके बारे में बकायदा जो है वो एजुकेशन लें।
1: राइट।
2: पोएट्री की आपने बात की थी, मैं बहुत थोड़ा अभी लिख रही हूँ, लेकिन अभी विमेंस डे गुजरा
1: जी।
2: तो उस पे मैंने एक बहुत छोटी सी लिखी थी, स्टिल अंडर प्रोसेस है, लेकिन एक छोटी सी मैंने नज़म लिखी थी कि क्या हुआ अगर एक औरत हूं मैं, क्या हुआ अगर एक औरत हूं मैं, ना जाने कितनों का हौसला हूं मैं।
1: क्या बात।
2: मेरी माँ मुझे चांद कहती थी, मेरा बाबा फख्र से देखता था मुझे, अपने बच्चों की मैं हूं जन्नत, क्या हुआ अगर एक औरत हूं मैं, ना जाने कितनों का हौसला हूं मैं। आपकी एक आवाज पे चली आती हूँ, आपकी एक आवाज पे चली आती हूँ मैं, आप सबकी भी बहन हूं मैं, क्या हुआ अगर एक औरत हूं मैं, ना जाने कितनों का हौसला हूं मैं। मेरे वजूद से है इस दुनिया को दुआम मिला, मेरे वजूद से इस दुनिया को दुआम मिला, जन्नत को जिताया गया मेरे लिए, मेरे बगैर ना घर का तसव्वुर ना माशरे का वजूद, मेरे बगैर ना घर का तसव्वुर ना माशरे का वजूद, अपने भाइयों के शाना बशाना खड़ी हूँ मैं, क्या हुआ अगर एक औरत हूँ मैं, ना जाने कितनों का हौसला
1: हूँ मैं। क्या बात है शगुफ्ता जी, बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत खूबसूरत मैसेज, क्या हुआ अगर एक औरत हूँ मैं, यही आपकी जो है हौसला हूँ मैं। ये बहुत मतलब खूबसूरत और बड़ा इनकरेजिंग है, ऐसी ही इनकरेजिंग पर्सनालिटी रहिएगा शगुफ्ता जी। हमारी बहुत सारी दुआएं, वेल विशेज आपके साथ हैं, आप इसी तरह तरक्की करती रहें, दूसरों के लिए जो है आप रहनुमाई का जरिया बनते रहें। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। जी ये थी शगुफ्ता नसरीन लंदन से हमारे साथ और उन्होंने हमें ज्वाइन किया, बहुत खूबसूरत और ज़बरदस्त उनकी गुफ्तगु रही इस खूबसूरत मैसेज के साथ कि ज़िंदगी में पॉजिटिव रहिए, ज़िंदगी में पॉजिटिविटी जितनी इम्पॉर्टेंट है आपकी सेहत के लिए, माशरे की सेहत के लिए, तो उसका ख्याल रखिए, दूसरों में जो है वो आप अच्छी बात, अच्छा इखलाक और अच्छी रहनुमाई जो है वो ज़रूर फराहम कीजिए। जी हमारा वक्त हुआ जाता है हमारे एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद आएंगे हम अपने गेस्ट नंबर 3 के साथ, वो भी बहुत इंटरेस्ट पर्सनालिटी है, हमारे साथ रहिएगा। स्टे ट्यून्ड विद सलाम मीडिया।
9: ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स, मूविंग बाउंड्रीज, जॉइनिंग हैंड्स, सलाम मीडिया। ह्यूमैनिटी सेट्स द एजेंडा।

0: Breaking stereotypes, moving boundaries, joining hands. Salam Media. Humanity sets the agenda.
1: Shimmer, sparkle, captivate.
2: जी वेलकम बैक करते हैं आपको जोहान्सबर्ग से मिड मॉर्निंग टॉक विद मरियम हाशमी प्रोग्राम में. और प्रोग्राम में माशाल्लाह बड़े एक्सक्लूसिव गेस्ट जो हैं वो आज आ रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड. और अब आपको अपने एक बेहतरीन किस्म के गेस्ट से मिलवाते हैं. बड़ी ज़बरदस्त पर्सनालिटी हैं और उनकी अचीवमेंट की मैं क्या बात करूँ. माशाल्लाह उन्होंने बहुत ज़्यादा चीज़ें अचीव की हैं लाइफ में. और सबसे बढ़कर जैसे मैं बात करती हूँ कि जो कम्युनिटी वर्क है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कम्युनिटी के लिए काम करना आसान नहीं है. तो उन्होंने ऐसी बहुत सारी चीज़ें की हैं जिससे जो है कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिले, खुशी मिले. और उसमें उनकी बहुत सारी जो है काविश हैं. सबसे पहले तो जो इनका मेन काम है वो ये है कि वुमेन एम्पावरमेंट पर वो बहुत ज़्यादा बात करती हैं और उनकी एडवोकेट हैं. और बहुत ज़्यादा उन्होंने इवेंट्स भी इस तरह के ऑर्गेनाइज़ किए हैं जिसमें वो प्रमोट कर सकें, वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर सकें, ख़वातीन को उनका सही हक और सही बात जो है उनकी बता सकें कि उनका क्या किरदार, क्या वेल्फ जो है बेहतरीन किरदार जो है उनका किसी भी सोसाइटी में होना चाहिए. क्योंकि ये हम सब जानते हैं कि ख़वातीन जो है वो किसी भी शोबे में पीछे नहीं हैं. वो जिस शोबे में भी जाती हैं अपना नाम भी बनवाती हैं, अपना लोहा मनवाती हैं और जनाब बहुत ज़्यादा जो है वो कामयाबियाँ जो है वो हासिल करती हैं. तो माशाल्लाह वो लंदन में बहुत ज़्यादा समारा इवेंट के नाम से इनकी एक ऑर्गेनाइजेशन, उसकी को चेयर हैं. और बहुत सारा इवेंट्स जो है वो ये कम्युनिटी के जो है ये बहुत करवाती हैं. अवार्ड्स जो हैं, सबसे मेन जो है बात ये है कि लोगों की जो अचीवमेंट हैं ये उनको सेलिब्रेट करती हैं. जी हाँ, अवार्ड सेरेमनीज जो हैं ये ऑर्गेनाइज करती हैं. लोगों की जितनी भी आपकी कोशिश, आपकी स्किल्स हैं ये उनको जो है सराहते हैं. उनकी जो है अप्रिसिएशन, एक छोटी सी अप्रिसिएशन है कि आप उनको अवार्ड से नवाजें. और माशाल्लाह ये लंदन में अपनी कम्युनिटी के लिए बेहतरीन काम कर रही हैं. तो मैं आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाऊँगी. हमारे साथ मौजूद है मिस मारिया. अस्सलाम वालेकुम मारिया.
3: क्या हाल है
2: जी मारिया? मैं बिल्कुल ठीक हूँ. मारिया कैसी हैं आप? कैसा है लंदन का वेदर? जोहान्सबर्ग का तो वेदर आज बहुत अच्छा है क्योंकि ये विंटर सीजन है, लेकिन लंदन में सुना है काफी गर्मी है, लेकिन अब काफी वेदर ठीक हो रहा है. आप क्या बताएंगी लंदन के वेदर के बारे में?
3: जी बिल्कुल, लंदन में तो इतना अच्छा मौसम है. We've had the longest summer in a long time. तो बहुत मजा आ रहा है. अब जब दिन छोटे होंगे तो फिर पता चलेगा.
2: सही बात है, बिल्कुल ऐसे ही है. क्योंकि लंदन के बारे में यही कहा जाता है जरा थोड़ा सा डिप्रेसिव हो जाता है विंटर, क्योंकि लोग जरा ज्यादा बाहर नहीं निकल पाते. लेकिन फिर भी वहाँ के जो लोग हैं उनका इखलाक बहुत अच्छा है, उनका दिल बहुत बड़ा है और वो बहुत ज्यादा जो है लोगों को मिलते हैं, लोगों से बात करते हैं और लोगों से जो है ना अपना जो है गेट टुगेदर करते हैं. आपके बारे में मैं यही बता रही थी मारिया कि माशाल्लाह बहुत ज्यादा गैदरिंग्स जो है वो ऑर्गेनाइज करती हैं और आपका मकसद सिर्फ यही है कि लोगों को खुशी दी जाए. अपनी कम्युनिटीज पर तो आपका ध्यान है ही, लेकिन ये है कि वहाँ पर इतने लोग हैं वो एटलीस्ट इंजॉय कर सके, उनके मुंह पर उनकी छोटी सी स्माइल आ जाए, क्योंकि मुस्कुराहट भी खेरना भी एक सदका ही जा रही है. और माशाल्लाह बहुत ज्यादा जो है वो काम कर रही है. अच्छा मारिया, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे यही है कि वुमेन एम्पावरमेंट पे आप माशाल्लाह बहुत काम करती हैं, आपने इसी फील्ड को क्यों चुना और आप क्या समझती हैं कि ये जो है वुमेन एम्पावरमेंट हर वुमेन को पता होनी कितनी जरूरी है?
3: देखिए जो वुमेन एम्पावरमेंट है, देखिए वी फॉलो हमारे जो जनरेशन है, जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, हमारी जो दादी नानी अम्मी खाला, रोल मॉडल्स इन आवर लाइव्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो मैंने सोचा कि देखिए हमारी जो जनरेशन अबव है उन्होंने हमारे लिए एक इतना अच्छा रोल मॉडल साबित किया, तो हमारा भी काम है आगे टू बी अ गुड रोल मॉडल एंड एम्पावर वुमेन. तो मैंने 2018 में शुरू किए थे वुमेन एम्पावरमेंट एंड लेडीज नाइट्स, 3-4 इवेंट्स ऑन एनुअल बेसिस. एंड उसका बस ये मकसद था कि हमारी जो खावतीन है दे फील अप्रिशिएटेड, उनकी जो अचीवमेंट्स हैं उनको हम आगे लेके जाएं. देखिए हर जो खावतीन है उनके दुनिया जिंदगी में कोई ना मसले होते हैं, तो मुझे ये था कि एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए कि जहाँ लोग अपने जो प्रॉब्लम्स है वो भी शेयर करें, कोई हल उनको चाहिए हो वो भी हम उनको हेल्प करें, उसके अलावा एक एंजॉयमेंट का जो माहौल होता है वो होना चाहिए. इट्स ऑल अबाउट एम्पावरिंग ईच अदर. एंड माशाल्लाह यहाँ यूके के अंदर हमारी जो खवातीन है उन्होंने इतना कुछ अचीव किया. यू नो वी आर वेरी लकी कि हम यहाँ यूके में रहते हैं. इट्स अ वेरी डिप्लोमेटिक सोसाइटी. Women have so much strength and power to achieve what they want.
2: Right.
3: हम यहाँ आदमियों से बिल्कुल पीछे नहीं है. So we have the same ability कि हम भी अचीव कर सके जो हमें हमारे दादा अब्बू
2: जी हमारे सारे फोर फादर्स जी उन्होंने अचीव किया. अच्छा बड़ा इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन है मरिया के, आपके ख्याल में जो ब्रिटिश एशियन कम्युनिटी है उसमें खवातीन अपना किरदार किस तरह मजबूत बना सकती हैं, इस पे आप कुछ रोशनी डालेंगी?
3: देखिए पहले तो ये है कि कम्युनिटी में आप इन्वॉल्व हो.
2: राइट.
3: सेकेंडली आपको पता है कि पॉलिटिक्स इज अ वेरी बिग थिंग इन द यूके एंड आई एम इन्वॉल्व्ड इन पॉलिटिक्स. मैं काफी एक्टिव हूँ पॉलिटिक्स के अंदर एंड यहाँ पॉलिटिक्स में बहुत हमारी खवातीन के लिए अपॉर्चुनिटीज हैं. तो इतनी हमारी फीमेल्स को यहाँ पता नहीं है कि हम कैसे पॉलिटिक्स में एंटर कर सकते हैं, कैसे हम एक चेंज लेके आ सकते हैं कम्युनिटी के अंदर थ्रू पॉलिटिक्स. तो ये भी बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज है कि हमारी खवातीन को पॉलिटिक्स में थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके आना चाहिए.
2: राइट. सही. अच्छा जो पब्लिक अपीयरेंस है, ये जो लीडरशिप है, ये कितनी ज़रूरी है? माशाल्लाह आप लीडरशिप जैसे आपने बात किया पॉलिटिक्स में है, और मैं अपनी ऑडियंस को भी ये बताती चलूँ कि माशाल्लाह काउंसलर के इलेक्शन के लिए जो है आपका इंतखाब हुआ था, यू वर सेलेक्टेड फॉर दैट. और बड़ा मेरा तो ख्याल है कि काउंसलर की जिम्मेदारियाँ भी बहुत होती हैं, प्रेशर भी. प्रेशर को कैसे हैंडल किया हमारी आपने उस टाइम पर?
3: सपोर्ट मेरे पास बहुत ज्यादा थी. एक तो मेरे हस्बैंड की सपोर्ट, फिर मेरे जो फ्रेंड्स थे जो इतनी दूर दूर से आते थे मेरी कैंपेनिंग के लिए, ऑल ओवर द कंट्री से लोग आते थे हेल्प करने के. इलेक्शन डे के ऊपर लोगों ने मुझे हेल्प की. जो यहाँ की जो पॉलिटिक्स है ना, इट इज सो वेलकमिंग फॉर फीमेल्स. सो हमारा बस ये है कि जितना भी आप कम्युनिटी के साथ काम करेंगे, आप अपने लोकल काउंसलर्स के साथ करेंगे, अपने लोकल काउंसिल के साथ काम करेंगे, उतना आपको वो नॉलेज भी होगा, उतना आप आगे भी जाएंगे एंड आप इंजॉय भी करेंगे.
2: राइट. बिल्कुल सही. अच्छा मारिया एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माशाल्लाह जैसे इवेंट्स आप ऑर्गेनाइज करती हैं और गैदरिंग्स में स्पेशली वुमेन बेस्ड आपके इवेंट्स अगर जो उनकी हम बात करें, तो उसमें जो है आपका मकसद जो है जैसे कि नेटवर्किंग है, नेटवर्किंग होती है या एक दूसरे की सपोर्ट होती है, तो ये सपोर्ट सिस्टम आप क्या समझती हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है या इंडिपेंडेंटली भी आप अपना कुछ कर सकते हैं फॉरेन कंट्रीज में?
3: वो कहते हैं ना कि एक बंदा या बंदी दे कैन ओनली अचीव थिंग्स लिमिटेड अमाउंट. अगर आप कंबाइन करें, लोगों के साथ आप काम करें, यू कैन अचीव अ लॉट मोर बिकॉज यू कैन डेलीगेट जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं. एंड कम्युनिटी कोहेजन इज वेरी इम्पोर्टेंट कि आप साथ में काम करेंगे तो आप और भी जल्दी आगे जाएंगे और ज्यादा आप अचीव करेंगे.
2: राइट. सो उसमें जो है आपकी क्या कंट्रीब्यूशन है कि आप कम्युनिटीज से टॉक करती हैं, डिफरेंट कम्युनिटीज की अगर डिफरेंट सोच है, डिफरेंट उनके ख्यालात डेफिनेटली होते होंगे, उनको आप उसको कैसे ओवरकम करती हैं मारिया?
3: देखिए आपको ना एक असेसमेंट करनी पड़ती है कि ये कम्युनिटी से मैं बात कर रही हूँ, इनके क्या मसले हैं, इनके क्या इंटरेस्ट है, इनके क्या सोल्यूशन हमने ढूंढने हैं. अगर आप ये चीजों को समझ लेना तो फिर काफी इजीली आप लोगों के साथ काम कर सकते हैं. डजंट मैटर कौन सी कम्युनिटी में वो यू नो पीछे से वो हो.
2: राइट. अच्छा मारिया जैसे आपने काउंसलर के इलेक्शंस की मैं बात करूँ, माशाल्लाह बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंपेन आपकी रही है. अच्छा आपने लोगों से बात की है, लोगों से आपका इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा हुआ है पब्लिक लेवल पे, तो उसमें आप क्या आपको क्या लगा कि लोगों की एक्सपेक्टेशन इस एक काउंसलर से क्या होती है, क्या उनके मेन कंसर्न्स हैं? जैसे कि अपने पाकिस्तान के भी बहुत सारे कंसर्न्स हमें पता है डिफरेंट, लेकिन लंदन के लोगों के कंसर्न्स क्या हैं, आपको क्या लगा कि किस पे ज़्यादा वर्क होना सिस्टम के लिए बेटर है?
3: देखिए जो काउंसिल के इलेक्शन होते हैं ना एज ए कैंडिडेट,
2: जी
3: वो होता है जो आपका वोट है उसके लिए आप इलेक्शन लड़ रहे हैं. तो मेरा जो वोट था वो चिज़े कनसबरी था.
2: राइट
3: तो इट्स अ वेरी लवली नाइस एफ्लुएंट एरिया, वहाँ बहुत अच्छे अच्छे कैफेज हैं, कम्युनिटी है. ज्यादा उनका ये होता है कि कीपिंग द पार्क्स ग्रीन, जो स्ट्रीट्स हैं उनको साफ रखना, टू मेक श्योर दैट देर इज लॉ एंड ऑर्डर इन द एरिया, टू इंस्पायर आवर यूथ, मोर यूथ सेंटर्स, मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर द यूथ, गेटिंग यूथ ऑफ द स्ट्रीट्स एंड
2: राइट
3: गेटिंग देम टू डू थिंग्स मोर प्रैक्टिकली. ज्यादा यही होता है कि जो लोकेलिटी होती है ना उन वहाँ चीजें सही चलनी चाहिए.
2: सही. अच्छा, लोगों के बीच हर कामयाब शख्स के पीछे किसी का हाथ होता है. आप अपनी कामयाबी का सेहरा किसके सर देना चाहेंगी, किसको देना चाहेंगी कि आपके पीछे सपोर्ट सिस्टम कौन था?
3: देखिए, सपोर्ट सिस्टम होता है कि जो आपकी फैमिली होती है. माय हस्बैंड इज वेरी वेरी सपोर्टिव. उन्होंने ऑलवेज मुझे पुश किया है कि ये चीज तुम कर सकती हो एंड तुम्हें करना चाहिए. उसके अलावा माई फादर हु इज नो लॉन्गर हियर, ही वॉज अ वेरी एम्बिशियस मैन, एंड इवन हिज इनपुट इन माई लाइफ वॉज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट. एंड फिर जो घर की जो खवातीन होती है, जो दादी, नानी, अम्मी, माई मदर इन लॉ, तो ये सब के जब जर्नीज में देखती हूँ ना, तो वो मुझे इंस्पायर करती है कि मैंने हटके थोड़ा सा और उनसे थोड़ा सा आगे जाना है जिंदगी के अंदर.
2: ये कितनी ज़बरदस्त बात है. इट्स टाइम फॉर अ वेरी वेरी शॉर्ट ब्रेक. मारिया से हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी एंड विल कम बैक जस्ट आफ्टर फ्यू मिनट्स. सो स्टे ट्यून्ड ऑन सलाम मीडिया फ्रॉम जोहान्सबर्ग.
1: शिमर, स्पार्कल, कैप्टिवेट. नथिंग लेस देन अ मास्टरपीस. ड्रॉपलेट्स ऑफ गोल्ड इंस्पायर्स प्रेशियस डिजाइन. Platinum bursts with intricate freshness, and every pure diamond becomes more than just a girl's best friend. Voda Gold Gem Jewelers, where timeless dreams become a reality. Come to us. We tailor-make designer gold, platinum, and diamond jewelry. Trade in or remodel your old gold. Clad yourself with classy name-branded watches. We offer insurance valuation and freezer card calculation. Visit us at 534 Ridge Road, Overport, or call 031-208-9142. Voda Gold Gem Jewelers, manufacturers of fine gold and diamond jewelry.
4: Dad, these Frimax chips are so tasty.
5: Wow, that really takes me back. My dad bought me a Frimax chips every day after school. They were my favorite when I was your age as well. Quality is at the very heart of what we do, and that's why we ensure that every Frimax packet is filled with the beautiful goodness and flavor-packed taste that you've come to expect from us since 1982. Frimax, from generation to generation.
6: You South African, of course. You anxious about the future. We've got you covered. Build on your wealth portfolio with Randri Jewelers Gold Coin Exchange. Visit us at 151 Stephen Dlamini Road, Musgrave, Durban. Or call us on 031-202-4700 for more information. Randri Jewelers Gold Coin Exchange. Your passport to gold investment.
7: Africa. Give the gift of clean water with Africa Muslims Agency. With every water well or borehole you donate, your drop becomes a river, reconnecting communities to nourishment, education, dignity.
6: Visit us at 151 Stephen Dlamini Road, Musgrave, Durban, or call us on 031-202-4700 for more information. Randri Jewelers Gold Coin Exchange, your passport to gold investment.
7: Africa. Give the gift of clean water with Africa Muslims Agency. With every water well or borehole you donate, your drop becomes a river, reconnecting communities to nourishment, education, dignity, and empowerment. Sponsor a

0: Business banking. Old Butica makes banking simple, transparent, and convenient. Visit oldbutica.co.za to learn more. Old Butica, your partner bank. Old Butica Bank Limited is an authorized financial services and credit provider.
1: Listen to something fresh. Listen to Salam Media, your humanitarian broadcaster.
2: G, welcome back program. Mid morning talk with Maryam Hashmi from Johannesburg, South Africa. जी हाँ, सलाम मीडिया से हम लाइव हैं और हमारे इस प्रोग्राम का मकसद, जैसे आपको पता है, कि यही है कि हम अपनी उर्दू लैंग्वेज को प्रमोट कर सकें. अपनी वो ख्वातीन जो दुनिया में बहुत बेहतरीन काम कर रही हैं और कुछ ना कुछ दुनिया के लिए, कम्युनिटी के लिए, अपने मुल्क के लिए कर रही हैं, उनको हम इस प्लेटफॉर्म के जरिए कनेक्ट कर सकें. हमारे साथ मौजूद हैं मारिया, और मारिया से बहुत अच्छी गुफ्तगू चल रही है. जैसे मैंने इनके इंट्रोडक्शन में बताया कि माशाल्लाह बहुत चीज़ें जो हैं वो कर रही हैं कम्युनिटी के लिए. उनमें सबसे एक सबसे इंपॉर्टेंट, मैं अपने लिहाज से भी कहूंगी कि मुझे जो चीज़ बहुत पसंद आई है वो ये कि वो दूसरों की सलाहियतों को सराहती हैं. जी हाँ, वो जो अवार्ड सेरेमनी है वो ऑर्गेनाइज करती हैं और लोगों को अप्रिशिएट करती हैं उनकी काविशों के बारे में. तो मैं उनसे पूछना चाहूंगी, जी मारिया, मैं आपसे मेन क्वेश्चन ये करना चाहूंगी. ये बहुत बड़ी चीज़ है अवार्ड देना किसी को, किसी की सलाहियतों को समझना और उसको अप्रिशिएट करना. ये ख्याल आपको कहाँ से आया, कैसे आया, और फिर इसमें आपको कोई अगर चैलेंजेस भी आए वो भी हमसे डिस्कस कीजिएगा. और इम्प्रेसिव मूवमेंट जो है, या प्राउड मूवमेंट, जब आपने किसी को उसकी एबिलिटीज के मुताबिक आपने उसको प्रोवाइड किया. एक अवार्ड है वो किसी के लिए तो बहुत बड़ी चीज़ है. वो आपने किसी को दिया और उसके चेहरे पर मुस्कान आई, उसकी क्या फीलिंग थी आपकी? आप ज़रा प्लीज़ इस पर रोशन डालिए.
3: मरियम, पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि कोई भी काम करने के लिए ना बहुत मेहनत लगती है. जैसे मैं आपको मुबारकबाद देना चाह रही हूँ कि देखो, आपने इतना कुछ अचीव किया है और आप इतनी अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म्स पे बैठती हैं जहाँ आप हमें आगे लेके आती हैं. सो पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस तरह के काम कर रही हैं. एंड आई थिंक इट्स रियली इम्पोर्टेंट कि यूर अ रोल मॉडल एज वेल, एंड आप इस तरह का अपना काम जारी रखें.
2: एंड
3: आई जस्ट वॉन्ट यू टू नो दैट वी ऑल अप्रिशिएट द वर्क दैट यू डू एज वेल, एंड दैट्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट. जो अवार्ड्स है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज होती है, बिकॉज उसका ये मकसद होता है कि एक अप्रिशिएशन किसी की मेहनत, उनकी जर्नी, उनकी जो लाइफ टाइम की मेहनत है उसको रिकॉग्नाइज करना. अब 16 साल पहले मेरे हस्बैंड ने शुरू किया था पाकिस्तान अचीवमेंट अवार्ड्स. अल्हम्दुलिल्लाह से 16 इयर्स हो गए हम पाकिस्तान अचीवमेंट अवार्ड्स को रन करते हैं, एंड वी रिकॉग्नाइज पाकिस्तानीज ग्लोबली हु एक्सेल्ड इन देयर फील्ड. एंड हम करते हैं हर साल 14 अगस्त को, 14th August, because it's Jashn-e-Azadi for Pakistan. And hamara sabse bada jo achievement tha na Pakistan Achievement Awards ka, ke mere husband ki ek dream thi ki unhone Pakistan ka flag dekhna tha Wembley Arena ke stage ke upar.
2: Kya baat.
3: That was his dream.
2: Zabardast.
3: And alhamdulillah, Pakistan ki 75th birthday pe humne ye khwab pura kiya, jahan 12,000 Pakistanis came to celebrate Pakistan's 75th birthday.
2: Mashallah.
3: At Wembley Arena. So in our 16 years, that's been our biggest achievement.
2: It looks like
3: to actually celebrate in Pakistan's 75th birthday, which is an iconic birthday, at the iconic Wembley Arena with Pakistan's flag on the stage. That was our biggest achievement.
2: That's amazing, man. That's really amazing. बहुत जबरदस्त. और देखिए, आपसे जब हम जुड़ते हैं, इस तरह के लोग जो इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए, तो ये रिकॉग्निशन मेरा ख्याल है आपको भी मिलनी चाहिए. और ये बड़ी छोटी सी एफर्ट है कि मैं आपको, आपके साथ ये प्रोग्राम कर रही हूँ और आपके ज़रिए पूरी दुनिया को मैसेज जा रहा है कि आप एटलीस्ट लंदन में अपने मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए कितनी जो है वो मेहनत आप कर रही हैं.
3: देखिए, पाकिस्तान का जो सॉफ्ट इमेज है ना आगे लेके आना, वो बहुत जरूरी है.
2: और ये जिम्मेदारी है हमारी.
3: जी बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज हम पाकिस्तानी कोई भी फील्ड में पीछे नहीं है. एंड यही मकसद है कि हम हर साल एक ब्रिटिश पाकिस्तानी पाव 100 लिस्ट निकालते हैं एंड उसके अंदर हम जो टॉप 100 पाकिस्तानी हैं उनको हाईलाइट करते हैं. उसकी बहुत मेहनत लगती है उस पब्लिकेशन को पब्लिश करने के लिए, बट

0: वो एक हमारी एक अचीवमेंट है कि हर साल ब्रिटिश पाकिस्तानी पावर 100 लिस्ट हम निकालते हैं। उसके अलावा हम करते हैं ब्रिटिश एशियंस हुज़ हू अवार्ड्स। दिस टेक्स प्लेस एट द आइकॉनिक सवोई होटल। एक ही सवोई है पूरी दुनिया के अंदर, तो वहाँ हर साल वहाँ होता है। तो 5 साल हो गए हैं फॉर ब्रिटिश एशियंस हुज़ हू अवार्ड्स। उसके अलावा हम करते हैं ब्रिटिश एशियन मीडिया अवार्ड्स। सो वी रेकग्नाइज पीपल विद इन द मीडिया इंडस्ट्री। उनको रेकग्नाइज करते हैं, उनकी अचीवमेंट्स को रेकग्नाइज करते हैं, उनकी जर्नी को रेकग्नाइज करते हैं। उसके अलावा आपको पता है यहाँ यूके के अंदर जो खाने पीने का माहौल है जबरदस्त है।
1: जी जी जबरदस्त.
0: तो जो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है, हम एक अवार्ड सेरेमनी ऑर्गेनाइज करते हैं। इट्स कॉल्ड एशियन फूड एंड रेस्टोरेंट अवार्ड्स। एंड अल्हम्दुलिल्लाह से 11 साल हो गया है इस अवार्ड सेरेमनी को। दिस इज आई 11th ईयर एंड द नेक्स्ट वन इज हैपनिंग ऑन द 7th ऑफ दिसंबर। सो वी रेकग्नाइज जो रेस्टोरेंटर्स हैं, होलसेलर्स, कैश एंड कैरीज, केटरर्स, वेन्यूज, फूड ब्रांड्स। आपको पता है हमारी एशियन फूड ब्रांड्स इतने हैं यूके के अंदर
1: जी
0: राइट नाउ। सो ये बहुत हमारा एक सक्सेसफुल अवार्ड सेरेमनी होती है ऑन एनुअल बेसिस। पूरी फूड इंडस्ट्री को, ड्रिंक्स इंडस्ट्री को, पूरी इंडस्ट्री को हम रिकॉग्नाइज करते हैं। एंड ये भी सेंट्रल लंदन में ही होता है। तो इंशाल्लाह दिस ईयर विल बी हैपनिंग। उसके
1: इंशाल्लाह.
0: अलावा हम काफी और कम्युनिटी का काम करते हैं। चांद रात करते हैं, चांद रात, ईद एग्जिबिशंस। काफी इन्फ्लुएंसर्स हमारे साथ काम करते हैं। काफी इन्फ्लुएंसर्स को हम वहाँ रिकॉग्नाइज करते हैं चांद रात के ऊपर एज वेल। एंड चांद रात इज अ वेरी कम्युनिटी इवेंट। ईद
1: जी
0: आने वाली होती है, लोगों ने रोजे रखे होते हैं, तो
1: एग्जैक्टली
0: बहुत
1: जी, एक्साइटमेंट होती है.
0: इंजॉयमेंट,
1: जी
0: एक्साइटमेंट
1: एक्साइटमेंट
0: होती
1: होती
0: है
1: है, बिल्कुल सही.
0: जी।
1: नहीं भैया, और जैसे कि आपने कितनी खूबसूरत बात किया कि ये बड़ा एक मैसेज है कि आपने हर एरिया को कवर किया है, कि उसमें आपने किसी को लेफ्ट आउट फील नहीं कराया कि भाई सिर्फ अवार्ड सेरेमनी जस्ट फॉर अस स्पेसिफिक पर्सन के लिए या स्पेसिफिक जो है मीडिया के लिए हो गई या किसी और चीज़ के लिए. आपने तकरीबन रेस्टोरेंट्स, फूड्स, हर डिपार्टमेंट को आपने कवर किया है. एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जाहिर है ये सोच लेकर आना और फिर सोच को एग्जीक्यूट करना, उस पर अमल करना, उसको अमली जामे पहनाना, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है. और मेरा ख्याल है कि हमारी आज की ऑडियंस को भी ये बहुत सुन के अच्छा लगा होगा कि कोई किसी कंट्री में बैठ कर, दुनिया के किसी कोने में बैठ कर जो है मुल्क के लिए कितना कुछ कर रहा है. हमारी बहुत अच्छी डिस्कशन रही आपके साथ, और आपके साथ का बहुत शुक्रिया. और बस ये कहना चाहूँगी कि कोई मैसेज आप देना चाहें जो ख्वातीन लीडरशिप में आना चाहें या वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से आप कोई मैसेज हमारी यूथ को देना चाहें तो प्लीज़ दीजिए.
0: देखे, कोई भी काम के लिए मेहनत लगती है। मेहनत के अलावा डिटर्मिनेशन बहुत जरूरी है और पैशन बहुत जरूरी है। तो मेरा बस यही है कि आप, इवन इफ यू डोंट मेक इट फर्स्ट टाइम राउंड, कीप ट्राइंग। आपको कोशिश जारी रखनी चाहिए, बिकॉज कोशिश के साथ आप अपने जो रिजल्ट्स है वो सक्सेस लेके आएंगे।
1: बिल्कुल.
0: एंड जस्ट कीप गोइंग एंड स्टे इन योर लेन। आपको पता है कि कम्युनिटी के अंदर काफी चीजें होती है कि देर विल बी टाइम्स वे यू फील लेट डाउन, देर विल बी टाइम्स यू विल फील दैट अदर पीपल आर ट्राइंग टू पुल यू डाउन। बट नो, स्टे इन योर लेन, कैरी ऑन विद डिटर्मिनेशन एंड ओनली हैव वन गोल कि मैंने ये चीज सक्सीड करनी है और मैंने ये चीज हासिल करनी है। एंड दैट इज योर सक्सेस।
1: या
0: एंड
1: ब्रिलियंट.
0: जो भी आपके कंपेटिटर्स है, जो आपके इर्द गिर्द जो भी कर रहे हैं, डोंट लेट इट बॉदर यू, जस्ट कीप गोइंग।
1: या एंड डोंट गिव अप, बहुत अच्छा मैसेज था. और मारिया के बारे में ये कहना चाहूँगी कि इतनी एफर्ट करिए, इनकी फैमिली को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, कि इनके भाई के लिए ये बहुत ज़्यादा दुआ के लिए कहती हैं, तो उनके लिए आप प्लीज़ उनको अपनी दुआओं में याद रखिएगा. इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए मेरी रिक्वेस्ट है कि जो इतने लोग हैं जो अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए इतना काम करते हैं, उनको वैसे तो दुआ की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी जब भी आप हाथ उठाएँ तो ज़रूर मारिया और उनकी फैमिली के लिए दुआ कीजिएगा. बहुत शुक्रिया मारिया आपके इस खूबसूरत साथ का, और बहुत अच्छा लगा. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़.
0: अल्लाह हाफिज, जज़ाकअल्लाह।
1: जज़ाकअल्लाह खैर. बहुत शुक्रिया. ये थी मारिया हमारे साथ लंदन से, और बहुत खूबसूरत और ज़बरदस्त इनके साथ डिस्कशन रही है हमारी. सो बहुत शुक्रिया आपके इस खूबसूरत साथ का. हमारे साथ एक और गेस्ट मौजूद हैं, ज़बरदस्त गेस्ट हैं, और बड़ी खूबसूरत उनके साथ भी ज़बरदस्त गुफ्तगू हम करने जा रहे हैं. तो मिलते हैं आपसे इस छोटे से ब्रेक के बाद. स्टे ट्यून्ड विद सलाम मीडिया.
2: At this time of trial and worry, the blessings of charity are the ideal means to avoid calamity and despair. The Al Imdad Foundation gives you the opportunity to sponsor a share in a borehole in South Africa for just 1,000 rand and provide what the Holy Prophet, peace be upon him, called the best form of charity. Donate online at alimdad.com or call 0861 786 243 for more information.
3: You know, it's a wonder how kids get anything done these days. With all the distractions, when do they even get time to study? As a mother, all I can really do is make sure they have all they need to perform at their best. That's why I choose to include Sunfoil Triple Refined Pure Sunflower Oil with every meal I make. Naturally cholesterol-free and approved by the Heart and Stroke Foundation as part of a balanced eating plan. So whether I'm cooking, frying or baking, I know every dish will be a wholesome one. Sunfoil, now we're cooking.
4: Right now, over 150 million children around the world are orphaned, facing hunger, hardship and uncertainty. With Islamic Relief's orphan sponsorship program, you can provide a child with access to education, nutritious food, essential healthcare, and a safe home. Your sponsorship is not just support. It's hope, security, and a brighter future. Be the reason an orphan child smiles again. Sponsor an orphan today with Islamic Relief.
5: When the perfect blend of stylish decor, exquisite halal cuisine, and warm hospitality come together, it could only mean Al Bayt Lodge, your true home away from home. Al Bayt is the ideal heaven for families, business people, and tourists with its four-star family rooms and other luxurious facilities. Conveniently situated close to Port Elizabeth Airport, the beach, and other amenities, your stay will be truly unforgettable as you'll be taking home lasting memories of the warm hospitality, the serenity and tranquility that Al Bayt has to offer. For reservations, call 041-583-6415 or visit www.albaytlodge.co.za.
6: It's a new beginning. It's a new era. Salam Media. Humanitarian journalism.

0: Game Reserve. Get to know the Big Five or cruise on an elephant safari game drive. Interact with lion and tiger cubs and enjoy world-class halal cuisine while we pamper you during your five-star stay. Indulge in the true African experience. For reservations, call now on 042-203-1400 or visit quantu.co.za. ZA, the Quantu Private Game Reserve, the place of gathering.
1: Across Sudan, starvation is tightening its grip. With rising food prices and widespread malnutrition, 8.7 million people are now facing emergency or famine-level hunger. As the conflict intensifies and aid routes narrow, families in Sudan are running out of options and time. The Al Imdad Foundation is delivering life-saving humanitarian aid to those most at risk. Stand with Sudan. Donate online at alimdad.com or call 0861 786 243 for more information.
2: World-class financial services only at Safi Global, your financial partner. If you are looking for Islamic, Sharia and ethical financial products, look no further. Sapphire Global offers a wide range of financial service offerings from short-term to life and investments. A full service center with all financial requirements under one brand. Our highly skilled and experienced consultants are ready to help protect your financial future. Contact us on 041-001-0184. Or visit our website on www.sapphireglobalfs.com. Sapphire Global is an authorized financial services provider.
3: Rejuvenating media day by day. This is Salam Media.
4: जी वेलकम करते हैं आपको मिड मॉर्निंग टॉक विद मरियम हाशमी फ्रॉम जोहान्सबर्ग सलाम मीडिया और उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लग रहा होगा. हमारे साथ मौजूद है नीलम असलम लंदन से और उनसे हम बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू कर रहे हैं कि किस तरह इस्लामोफोबिया को रोका जा सकता है, ये जो फोबिया है इसको खत्म किया जा सकता है, एक पॉजिटिव मैसेज जो है वो पूरी दुनिया को दिया जा सकता है. अच्छा नीलम, आपसे बात हुई इस्लामोफोबिया पे, एक बड़ा खूबसूरत आपसे क्वेश्चन करना चाहूंगी. डेफिनेटली आपका डाइवर्स एक्सपीरियंस है, अब थोड़ी आपसे आपकी गुफ्तगू की जाए जरा कि जो डाइवर्स एक्सपीरियंस आपका, माशाल्लाह पाकिस्तान में आपने बहुत काम किया जर्नलिज्म में, आपने माशाल्लाह बहुत कामयाबी दिखाई है, बहुत स्किल्स दिखाई हैं और उसके बाद आप माशाल्लाह यूके में बेस्ड हैं, तो आप क्या समझती हैं ये जो जर्नलिज्म है ये कंट्री टू कंट्री डिफिकल्ट है, डिफरेंट है, इसके चैलेंजेस डिफरेंट है और जो इस फील्ड में आना चाहते हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे?
5: आई थिंक अपना जर्नलिज्म जो है वो ज्यादा कमर्शलाइज में कह सकती हूँ कि हो गई है पूरी दुनिया में. अभी भी जो लोग जर्नलिज्म करना चाहते हैं और जर्नलिज्म को अंडरस्टैंड करते हैं कि जर्नलिज्म क्या है, एक खबर को रिपोर्ट करना, एक इशू को उठाना, किसी इवेंट के ऊपर रिपोर्ट करना, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करना, ये जर्नलिज्म है. लेकिन कमर्शलाइज अब मैं कह रही हूँ किस सेंस में हो गई, अब एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स वो भी खबर को रिपोर्ट कर रहे हैं और वो अपने अंदाज में कर रहे हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, अच्छा ही है कि वो इश्यूज को उठाते, लेकिन उस खबर की क्या सेंसिटिविटी है, वो जो हम कहते थे कि मीडिया एथिक, वो कहीं ऑब्वियसली उनके पास, वी कांट ब्लेम देम, उनके पास वो एजुकेशन नहीं है. तो हर कोई इंसान जिसके पास एक कैमरा आ गया, अच्छा जिसके पास महंगे तरीन फोन आ गया है, जिसने अच्छे तरीन माइक्स ले लिए हैं, वो अब एक जर्नलिस्ट बन गया. तो पहले तो हम ये डिसाइड कर लेंगे कौन जर्नलिस्ट है या नहीं है. जो नहीं है जर्नलिस्ट, मैं उसको कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रही, लेकिन उनकी जो फील्ड है उसको सही तरह से डिफाइन होना चाहिए. पाकिस्तान में इस वक्त जर्नलिज्म हो रही है, गवर्नमेंट का जो नैरेटिव है, पाकिस्तान और इंडिया दोनों की मैं एग्जांपल दूंगी, जो गवर्नमेंट का नैरेटिव है उसको बढ़ाना आगे, उसको स्प्रेड करना, उसके ऊपर बात करना, पाकिस्तान में इस लेवल की जर्नलिज्म हो रही है. जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म होती थी, वो जो लोगों के इश्यूज से मुतालिक जर्नलिज्म होती थी, वो बहुत कम हो गई है. ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही खत्म हो गई है, लेकिन 80% जो पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो चैनल आपको यूट्यूब के जरिए से दुनिया के किसी भी हिस्से में अवेलेबल है, और वो पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के चैनल्स भी हैं, सारे सैटेलाइट चैनल्स हैं, उनमें 80% जो जर्नलिज्म हो रही है

0: सिर्फ गवर्नमेंट या एस्टेब्लिशमेंट की जो भी न्यूज है उसको बताना है एज इट इज, जैसा वहां से आया है. ये भी जर्नलिज्म की एक फॉर्म जरूर है, लेकिन इसको हम ये कह सकते हैं कि ये गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन बन गए. और मीडिया कभी भी, कोई भी चैनल, कोई भी न्यूज वेबसाइट, किसी भी इदारे या किसी भी मुल्क का स्पोक्स पर्सन नहीं हो सकता, वरना उसके लिए एक अलग टर्म यूज होती है हर कंट्री में, स्टेट मीडिया. तो वो
1: राइट
0: स्टेट मीडिया चैनल एक ही होता है, सारे नहीं होते. तो इस वक्त पाकिस्तान में तो ये डिलेमा है सबसे बड़ा. यहाँ तक जहां तक बात है बरतानिया की, बरतानिया में अगर हम इसको मजीद थोड़ा सा कंपार्टमेंटलाइज कर लें कि एक तो पाकिस्तानी डायस्पोरा है, वो किस तरह से यहाँ पे सहाफत कर रहा है, तो उनकी सहाफत पाकिस्तान में होने वाली सहाफत से भी जो है वो मैं कह सकती हूँ कि थोड़ी सी बुरी जा रही है, क्योंकि वो भी सहाफत को उन्होंने सिर्फ इवेंट्स को कवरेज की हद तक महदूद कर लिया है. इंडिया में एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है पापराजी, दुनिया भर में यूज होती है, कि वो कुछ रिपोर्टर्स हैं जो कि अगर कोई बॉलीवुड स्टार आ गया तो उसके जिम के बाहर भी पाए जाएंगे, उसके वो कहीं लंच या कहीं गए हैं वहां पे भी पाए जाएंगे, इवेंट की कवरेज करते भी पाए जाएंगे, और तमाम जो पॉलिटिकल पर्सनालिटीज हैं उनको भी एज सेलिब्रिटीज ट्रीट करेंगे. जो सहाफी होता है वो चाहे कितनी भी बड़ी शख्सियत उसके सामने आ जाए, वो उसको सेलिब्रिटी के तौर पे ट्रीट नहीं करता,
1: सही
0: वो उसको एक खबर के तौर पे ट्रीट करता है. तो वो पाकिस्तानी डायस्पोरा की यहाँ पे जो जर्नलिज्म उसका अहवाल है. बाकी बरतानिया का जो बाकी मेन स्ट्रीम मीडिया है, आई थिंक पैलेस्टाइन को छोड़ के उसके अलावा जितने भी टॉपिक्स हैं ये बहुत फेयर जर्नलिज्म करते हैं, बहुत क्वालिटी जर्नलिज्म होती है, बहुत अच्छा काम हो रहा है. डॉक्यूमेंट्रीज जो बन रही है बहुत अच्छी है, चैनल 4 की डॉक्यूमेंट्रीज को लोग बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं, BBC बहुत ज्यादा इन डेप्थ रिपोर्टिंग करता है बहुत सारे इश्यूज में. यहाँ का मेन स्ट्रीम मीडिया ने जो सिर्फ डिसऑनेस्टी की है वो पैलेस्टाइन के इशू के ऊपर की है, या फिर हम कह सकते हैं अगर इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं तो जब मुस्लिम इश्यूज आते हैं तो वहां पर ऐसा लगता है कि ये या तो उनको रिपोर्ट करना भूल गए हैं, या उनको जो जिस तरह से उस इवेंट की रिपोर्टिंग होनी चाहिए, जितना एयर टाइम उसको मिलना चाहिए मुस्लिम स्टोरीज को, उतना नहीं दिया जाता. तो कमियां हर, कोताहियां हर जगह होती हैं. तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि बेसिकली क्या डिफरेंस है पाकिस्तानी मीडिया में और बरतानिया में.
1: सही, और यही हमारा मैसेज होगा कि जब भी आप जर्नलिज्म करें फेयर जर्नलिज्म जरूर होना चाहिए, अपनी कवरेज जो है आप जरूर करें, और उसका जो प्रेशर है डेफिनेटली ये प्रेशर जो है हर लेवल पे होता है, उस प्रेशर को जरा तरीके से मेंटेन करें. अच्छा नीलम, जाते जाते बस यही कि आपसे कि अच्छा कोई मैसेज दें, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं जरूर पूछना चाह रही थी कि जो नेगेटिव न्यूज है सम टाइम उनको बहुत ज्यादा टेंशन मिलती है और उसकी निस्बत जो पॉजिटिव न्यूज है वो कहीं बहुत पीछे रह जाती है, तो जाहिर है कंट्री का एक इमेज जो है वो नेगेटिव बन जाता है कि नेगेटिव खबरें दिन ब दिन आती जाती हैं. तो उस पर जनाब जी क्या कर सकते हैं, क्या मुस्बत तब्दीली हम ला सकते हैं और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, और साथ ही अपना मैसेज भी दीजिएगा हमारी न्यू जनरेशन को.
0: मैं इसमें ये कह सकती हूँ कि जो नेगेटिव न्यूज है वो तो नेगेटिव है ही है, उसको आप पॉजिटिव करके कभी रिपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी अपनी प्रोफेशन के साथ डिसऑनेस्टी होगी. अगर कहीं किसी कंट्री में कुछ बुरा हो रहा है तो वो एज इट इज ही रिपोर्ट होगा, लेकिन लोग जो हैं उनका अच्छाई के ऊपर भरोसा रहे और एक वो
1: क्या
0: जो
1: बात
0: उम्मीद बहार है
1: जी.
0: वो रहे, उसके लिए आप उस कंट्री में यकीनन कुछ अच्छा भी हो ही रहा होगा, उस सोसाइटी में कुछ अच्छा हो ही रहा होगा. पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं तो पाकिस्तान के पॉलिटिशियन और एस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं, पाकिस्तान में अब्दुल सत्तार एडी भी पैदा हुए थे, पाकिस्तान में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान भी पैदा हुए थे, पाकिस्तान में आतिफ असलम भी पैदा हुए हैं, पाकिस्तान में नुसरत फतेह अली खान भी पैदा हुए हैं, और इस तरह के और बहुत सारे जो हमारे डायमंड्स हैं, अनसंग हीरोज भी होंगे जिनका शायद अभी कोई नाम भी नहीं लेता, जो कि बड़ा बड़ा अच्छा काम भी कर रहे होंगे. तो उनको भी निकालने मेहनत करनी पड़ती है, हो सकता है वो सोशल मीडिया पे उतने एक्टिव ना हो,
1: सही
0: उनको निकाल के सामने लाए तो वो मुस्बत खबर हो जाएगी, तो सबको पता चल जाएगा कि सोसाइटी में जहाँ बुराई है तो ये सोसाइटी हम सोचते हैं ना खड़ी कैसी है, पाकिस्तान चल कैसे रहा है, तो ये इन्हीं अनसंग हीरोज की बदौलत और जो बहुत ऑनेस्टी के साथ और सिंसेरिटी के साथ काम कर रहे हैं मुल्क के ये भी अपने लोगों के लिए भी, इनकी वजह से, इनकी दुआओं की वजह से और इनकी अच्छाई की वजह से पाकिस्तान खड़ा है. तो उन स्टोरीज को भी सामने लाया और वो भी सुनाए अपने नाज़रीन.
1: क्या बात है, बहुत शुक्रिया नीलम, आपके साथ बहुत जबरदस्त गुफ्तगु रही और बड़ा अच्छा आपका पैगाम जो है वो हमें मिला कि जहां आप नेगेटिव न्यूज पे बहुत ध्यान देते हैं वहां तकरीबन उस कंट्री की पॉजिटिव व्यूज जो है, पॉजिटिव न्यूज जो है वो भी आप जरूर निकालें, उनके लेजेंड्स को आप याद रखें, उनकी मेहनत और कोशिशों को याद रखें जो उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान के लिए की है। तो हमारी ये छोटी सी कोशिश थी जैसे कि हम यहाँ जोहान्सबर्ग से अपने मुल्क को अपनी जुबान को प्रमोट कर सकें वो हमने किया, अब आपकी कोशिश की बारी, आप जरूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया नीलम, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बहुत दुआ है आपके लिए कि अल्लाह ताला आपके लिए बहुत ज्यादा आसानियां और कामयाबी करे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।
2: When the perfect blend of stylish decor, exquisite halal cuisine and warm hospitality come together, it could only mean Al Bayt Lodge, your true home away from home. Al Bayt is the ideal heaven for families, business people and tourists with its four-star family rooms and other luxurious facilities. Conveniently situated close to Port Elizabeth Airport, the beach and other amenities, your stay will be truly unforgettable as you'll be taking home lasting memories of the warm hospitality, the serenity and tranquility that Al Bayt has to offer. For reservations, call 041-583-6415 or visit www.albaytlodge.co.za.
3: Dad, these Frimax chips are so tasty.
4: Wow, that really takes me back. My dad bought me a Frimax chips every day after school. They were my favorite when I was your age as well. Quality is at the very heart of what we do, and that's why we ensure that every Frimax packet is filled with the beautiful goodness and flavor-packed taste that you've come to expect from us since 1982. Frimax, from generation to generation.
5: Gaza needs your support more than ever. Homes have been shattered, and families have lost everything. With your support, our teams are delivering clean water tankers, feeding the hungry, and assisting orphans who have no one left. Let us give Gaza whatever help we can. African Muslims Agency, empowering, educating, inspiring.
6: Are you banking with convenience, transparency and flexibility? With Al Baraka Bank's transactional banking account, you can enjoy convenient everyday banking designed around your needs. Benefit from zero fees on point-of-sale transactions and manage your banking easily through Al Baraka's secure mobile banking app and internet banking platform. From everyday payments to managing your personal or business banking, Al Baraka makes banking simple, transparent and convenient. Visit albaraka.co.za to learn more. Al Baraka, your partner bank. Al Baraka Bank Limited is an authorized financial services and credit provider.
7: Right now, in lands many of us feel deeply connected to, a mother holds a sick child, worried and fearful, as she knows her nearest hospital has been destroyed. This is the mother we go beyond borders to reach. Doctors Without Borders is there in the world's toughest places. We go where others can't or won't, and we go immediately. When you give to us, we go even further. Visit msf.org.za/sadaqa, that's SADAQAH, and support Doctors Without Borders today. Doctors Without Borders, we go there.
8: Connect and stay ahead with Salam Media.